ना हरम में ना सुकून मिलता है बुतखाने में, चैन मिलता है तो साकी तेरे मैखाने में।